0: एक वन के पशुओं को ऐसा लगा कि वे सभ्यता के उस स्तर पर पहुंच गए हैं जहां उन्हें एक अच्छी शासन व्यवस्था अपनानी चाहिए। और एक मत से यह तय हो गया कि वन प्रदेश में प्रजातंत्र की स्थापना हो। पशु समाज में इस क्रांतिकारी परिवर्तन से हर्ष की लहर दौड़ गई कि सुख समृद्धि और सुरक्षा का स्वर्ण युग अब आया। जिस वन प्रदेश में हमारी कहानी ने चरण धरे है उसमें बेड़े बहुत थी, निहायत नेक, ईमानदार, कोमल, विनयी, दयालु, निर्दोष पशु जो घास तक को फूक फूक कर खाता है। भेड़ों ने सोचा कि
1: अब हमारा भय दूर हो जाएगा, हम अपने प्रतिनिधियों से कानून बनवाएंगे कि कोई जीवदारी किसी को ना मारे, न सताए, सब जिए और जीने दे, शांति, स्नेह, बंधुत्व और सहयोग पर समाज आधारित हो।
0: इधर भेड़ियों ने सोचा कि
2: हमारा अब संकट काल आया, भेड़ों की संख्या इतनी अधिक है कि पंचायत में उनका ही बहुमत होगा, और अगर उन्होंने कानून बना दिया कि कोई पशु किसी को ना मारे तो हम घायेंगे क्या? क्या हमें घास चरना सीखना पड़ेगा?
0: जो जो चुनाव समीप आता भेड़ों का उल्लास बढ़ता जाता, जो जो चुनाव समीप आता भेड़ियों का दिल बैठता जाता। एक दिन बूढ़े सियार ने भेड़िये से कहा,
3: मालिक, आजकल आप बड़े उदास रहते हैं।
0: हर भेड़िये के आसपास दो चार सियार रहते ही है। जब भेड़िया अपना शिकार खा लेता है तब ये सियार हड्डियों में लगे मांस को कुतरकर खाते हैं और हड्डियां चूसते रहते हैं। ये भेड़िये के आसपास दुम हिलाते चलते हैं, उसकी सेवा करते हैं और मौके बे मौके हुआ हुआ चिल्लाकर उसकी जय बोलते हैं। तो बूढ़े सियार ने बड़ी गंभीरता से पूछा,
3: महाराज, आपके मुखचंद्र पर चिंता के मेघ क्यों छाए हैं?
0: खैर, भेड़िये ने कहा,
2: तुझे क्या मालूम नहीं है कि वन प्रदेश में नई सरकार बनने वाली है? हमारा राज तो अब गया।
0: सियार ने दांत निपोर कर कहा,
3: हम क्या जाने महाराज, हमारे तो आप ही माई बाप है, हम तो कोई और सरकार नहीं जानते, आपका दिया खाते हैं, आपके गुण गाते हैं।
0: भेड़िये ने कहा,
2: मगर अब समय ऐसा आ रहा है कि सूख की हड्डियां भी चबाने को नहीं मिलेंगी।
0: सियार सब जानता था मगर जानकर भी जानने का नाटक ना करना आता तो सियार शेर ना हो गया होता। आखिर भेड़िये ने वन प्रदेश की पंचायत के चुनाव की बात भूड़े सियार को समझाई और बड़े गिरे मन से कहा,
2: चुनाव अब पास आता जा रहा है, अब यहां से भागने के सिवा कोई चारा नहीं, पर जाए भी कहा।
0: सियार ने कहा,
3: मालिक, सर्कस में भर्ती हो जाइए।
0: भेड़िये ने कहा,
2: अरे वहां भी शेर और रीछ को तो ले लेते, पर हम इतने बदनाम है कि हमें वहां भी कोई नहीं पूछता।
3: तो
0: सियार ने खूब सोचकर कहा,
3: अजायब घर में चले जाइए।
0: भेड़िये ने कहा,
2: अरे वहां भी जगह नहीं है, सुना है वहां तो आत्मी रगे जाने लगे हैं।
0: बूढ़ा सियार अब ध्यान मग्न हो गया।

0: उसने एक आंख बंद की, नीचे के होठ को ऊपर के दांत से दबाया और एक टक आकाश की तरफ देखने लगा। फिर बोला,
1: बस सब समझ में आ गया मालिक। अगर पंचायत में आप भेड़िया जाति का बहुमत हो जाए तो?
0: भेड़िया चिढ़कर बोला,
2: कहां की आसमानी बातें करता है। अरे हमारे जाति कुल 10% है और भेड़ों तथा अन्य छोटे पशु 90%। भला वे हमें काहे चुनेंगे। अरे कहीं जिंदगी अपने को मौत को हाथ साम सकती है, मगर हाँ ऐसा हो सकता तो क्या बात थी।
0: बूढ़ा सियार बोला,
1: आप खिन्न मत होइए सरकार, एक दिन का समय दीजिए, कल तक कोई योजना बन ही जाएगी। मगर एक बात है, आपको मेरे कहे अनुसार कार्य करना पड़ेगा।
0: मुसीबत में फंसे भेड़िये ने आखिर सियार को अपना गुरु माना और आज्ञा पालन की शपथ ली। दूसरे दिन बूढ़ा सियार अपने 3 सियारों को लेकर आया। उनमें से उसने एक को पीले रंग में रंग दिया था, दूसरे को नीले में और तीसरे को हरे में। भेड़िये ने देखा और पूछा,
2: अरे ये कौन है?
0: बूढ़ा सियार बोला,
1: ये भी सियार है सरकार, मगर रंग के सियार है, आपकी सेवा करेंगे, आपके चुनाव का प्रचार करेंगे।
0: भेड़िये ने शंका की,
2: मगर इनकी बात मानेगा कौन? ये तो वैसे ही छल कपट के लिए बदनाम है।
0: सियार ने भेड़िये का हाथ चूम कर कहा,
1: बड़े भोले हैं आप सरकार। अरे मालिक, रूप रंग बदल देने से तो सुना है आदमी तक बदल जाते हैं, फिर ये तो सियार है।
0: और तब बूढ़े सियार ने भेड़िये का भी रूप बदला, मस्तक पर तिलक लगाया, गले में कंठी पहनाई और मुंह में घास के तिनके खोंस दिए। बोला,
1: अब आप पूरे संत हो गए, अब भेड़ों की सभा में चलेंगे, मगर 3 बातों का ख्याल रखना। अपने हिंसक आंगों को ऊपर मत उड़ाना, हमेशा जमीन के ओर देखना और कुछ बोलना मत, नहीं तो सब पोल खुल जाएगी और वहां बहुत सी भेड़े आएंगी, सुंदर सुंदर मुलायम मुलायम, तो कहीं किसी को तोड़ मत खाना।
0: भेड़िये ने पूछा,
2: लेकिन ये रंगे सियार क्या करेंगे, ये किस काम आएंगे?
0: बूढ़ा सियार बोला,
1: ये बड़े काम के है, आपका सारा प्रचार तो ये ही करेंगे, इन्हीं के बल पर आप चुनाव लड़ेंगे। यह पीला वाला सियार बड़ा विद्वान है, विचारक है, कवि भी है, लेखक भी। यह नीला सियार नेता और पत्रकार है, और यह हरा धर्म गुरु। बस अब चलिए,
2: जरा ठहरो।
0: भेड़िये ने बूढ़े सियार को रोका,
2: कवि लेखक नेता विचारक ये तो सुना है, बड़े अच्छे लोग होते, और ये तीनों?
0: बात कटाकर सियार बोला,
1: ये तीनों सच्चे नहीं है, रंगे हुए हैं महाराज, अब चलिए देर मत करिए।
0: और वे चल दिए। आगे बूढ़ा सियार था, उसके पीछे रंगे सियारों के बीच भेड़िया चल रहा था, मस्तक पर तिलक, गले में कंटी, मुख में घास के तिनके, धीरे धीरे चल रहा था, अत्यंत गंभीरता पूर्वक, सिर झुकाए विनय की मूर्ति।

0: उधर एक स्थान पर सहस्त्रों भेड़े इकट्ठी हो गई थी उस संत के दर्शन के लिए, जिसकी चर्चा बूढ़े सियार ने फैला रखी थी। चारों सियार भेड़िए की जय बोलते हुए भेड़ों के झुंड के पास आए। बूढ़े सियार ने एक बार जोर से संत भेड़िए की जय बोली। भेड़ों में पहले से ही यहां वहां बैठे सियारों ने भी जय ध्वनि की। भेड़ों ने देखा तो वे बोली,
1: अरे भागो, यह तो भेड़िया है।
0: तुरंत बूढ़े सियार ने उन्हें रोककर कहा,
2: भाइयों और बहनों, आप भय मत करो, भेड़िया राजा संत हो गए हैं। उन्होंने हिंसा बिल्कुल छोड़ दी है, उनका हृदय परिवर्तन हो गया है। आप आज 7 दिनों से खास खा रहे हैं, रात दिन भगवान के भजन और परोपकार में लगे रहते हैं। उन्होंने अपना जीवन जीव मात्र की सेवा में अर्पित कर दिया है। अब वे किसी का दिल नहीं दुखाते, किसी का रोम तक नहीं छूते। भेड़ों से उन्हें विशेष प्रेम है। इस जादी ने जो कष्ट सहे हैं, उनको याद करके कभी कभी भेड़िया संत की आंखों में आंसू आ जाते। उनके अपनी भेड़िया जादी ने जो अत्याचार आप पर किए हैं, उनके कारण भेड़िया संत का माथा लज्जा से चुका है, सो चुका ही हुआ है। परंतु अब वे शेष जीवन आपकी सेवा में लगाकर तमाम पापों का प्रायश्चित करेंगे। आज सवेरे की ही बात है कि एक मासूम भेड़ के बच्चे के पाव में कांड लगा गया, तो भेड़िया संत ने उसे दांतों से निकाला, दांतों से। पर जब वह बेचारा कष्ट से चल बसा, तो भेड़िया संत ने सम्मान पूर्वक उसकी अंत्येष्टि क्रिया की। अब तो वे सर्वस्व त्याग चुके हैं। अब आप उनसे भय मत करें, उन्हें अपना भाई समझे। सब मिलकर बोलो, संत भेड़िया की जय।
0: भेड़िया जी अभी तक उसी तरह गर्दन डाले विनय की मूर्ति बने बैठे थे। बीच में कभी कभी सामने की ओर इकट्ठी भेड़ों को देख लेते और टपकती हुई लार को गुटक जाते। बूढ़ा सियार फिर बोला,
2: भाइयों और बहनों, मैं भेड़िया संत से अपने मुखारविंद से आपको प्रेम और दया का संदेश देने की प्रार्थना करता, पर प्रेमवश उनका हृदय भर आया है। वे गदगद हो गए हैं और भावातिरेक से उनका कंठ अवरुद्ध हो गया है, वे बोल नहीं सकते। अब आप इन 3 रंगीन प्राणियों को देखिए, आप इन्हें न पहचान पाए होंगे, पहचाने भी कैसे, ये इस लोक के जीव तो है नहीं, ये तो स्वर्ग के देवता है जो हमें सदुपदेश देने के लिए पृथ्वी पर उतरे हैं। ये पीले विचारक है, कवि है, लेखक है, नीले नेता है और स्वर्ग के पत्रकार है और हरे वाले धर्म गुरु है। अब कविराज आपको स्वर्ग संगीत सुनाएंगे। हाँ कवि जी।
0: पीला सियार को हुआ हुआ के सिवा कुछ और तो आता ही नहीं था।
2: हुआ हुआ।

0: चिल्ला दिया, शेष सियार भी हुआ हुआ बोल पड़े। बूढ़े सियार ने आंख के इशारों से शेष सियारों को मना किया और चतुराई से बात को यो कहकर संभाला,
1: भाई कवि जी तो कोरस में गीत गाते, पर कुछ समझे आप लोग? कैसे समझ सकते? अरे कवि की बात सबकी समझ में आ जाए तो वह कवि काहे का? कह रहे हैं कि जैसे स्वर्ग में परमात्मा, वैसे ही पृथ्वी पर भेड़िया। हे भेड़िया जी महान, आप सर्वत्र व्याप्त है, सर्वशक्तिमान है। प्रातः आपके मस्तक पर तिलक करती है, सांझ में उषा आपका मुख चूमती है, पवन आप पर पंखा करती है और रात्रि आपकी ही ज्योति लक्ष लक्ष खंड होकर आकाश में तारे बनकर चमकती है। हे विराट, आपके चरणों में इस शूद्र का प्रणाम है।
0: फिर नीले रंग के सियार ने कहा,
1: नरपलों की रक्षा बलवान ही कर सकते, भेड़े कोमल है, नरबल है, अपनी रक्षा नहीं कर सकती। भेड़िए बलवान है, इसलिए उनके हाथ में अपने हिदों को छोड़ निश्चिंत हो जाओ, वे भी तुम्हारे भाई है, आप एक ही जाति के हो। तुम भेड़ वह भेड़िया कितना कम अंतर है, और बेचारा भेड़िया व्यर्थ ही बदनाम पर दिया गया है कि वह भेड़ों को खाता है। अरे गाते और है, हड्डियां उनके द्वार पर फेंक जाते, ये व्यर्थ बदनाम होते। तुम लोग तो पंचायत में बोल भी नहीं पाओगे। भेड़िए बलवान होते, यदि तुम पर कोई अन्याय होगा तो ठटकर लड़ेंगे। इसलिए अपने हित की रक्षा के लिए भेड़ियों को चुनकर पंचायत में भेजो, बोलो संत भेड़िया की जय।
0: फिर हरे रंग के धर्म गुरु ने उपदेश दिया,
1: जो यह त्याग करेगा वह उस लोक में पाएगा, जो यहां दुख भोगेगा वह वहां सुख पाएगा, जो यहां राजा बनाएगा वह वहां राजा बनेगा, जो यहां वोट देगा वह वहां वोट पाएगा। इसलिए सब मिलकर भेड़ियों को वोट दो, वे दानी है, परोपकारी है, संत है, मैं उनको प्रणाम करता हूं।
0: यह एक भेड़िए की कथा नहीं है, यह सब भेड़ियों की कथा है। सब जगह इस प्रकार प्रचार हो गया और भेड़ों को विश्वास हो गया कि भेड़िए से बड़ा उनका कोई हित चिंतक और हित रक्षक नहीं है। और जब पंचायत का चुनाव हुआ तो भेड़ों ने अपनी हित रक्षा के लिए भेड़ियों को चुना और पंचायत में भेड़ों के हितों की रक्षा के लिए भेड़िए प्रतिनिधि बनकर गए और पंचायत में भेड़ियों ने भेड़ों की भलाई के लिए पहला कानून यह बनाया,
1: हर भेड़िए को सवेरे नाश्ता के लिए भेड़ का एक मुलायम बच्चा दिया जाए, दोपहर के भोजन में एक पूरी भेड़, तदा शाम को स्वास्थ्य में ख्याल से खम खाना चाहिए, इसलिए आधी भेड़ दी जाए।
0: धन्यवाद।
2: सुनो अफसाना, जिंदगी के कच्चे रंगों की पक्की कहानी।
3: प्रस्तोता अनघा रामचंद्रन, निया सारा सजो।